0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 6 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM
4: 89.
5: Trending today.
6: Carly Rae Jepsen has dropped a brand new album titled Day and Night. The project is up on all platforms.
3: City FM
4: 89.
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
9: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
11: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
12: Hold on, special delivery coming through.
13: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
14: We're now live on WhatsApp.
15: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
14: It's as easy as 03142-898989.
13: Save our number now and WhatsApp us.
16: City FM 89.
17: You're listening to
18: Non-Stop Hits.
19: No talk.
20: Just you and the music.
21: Back to back starts now.

0: TFM 89. It's 6:30 p.m. TFM 89.
1: You got me going crazy.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
4: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
6: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: City FM 89. We're playing your song.
7: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
8: City FM 89.
9: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back.
11: Starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: City FM 89।
4: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे, टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान। तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
6: City FM 89, we're playing your song.
7: Everybody go.
1: You're listening to
8: Retro 89 with Amir Nasir.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: Sound of your city. City FM 89.
4: Trending today.
5: Carly Rae Jepsen has dropped a brand new album titled Day and Night. The project is up on all platforms.
6: City FM 89.
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
3: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m. City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
2: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग रील फिक्स।
5: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
6: City FM 89।

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: City 89.
3: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next.
0: Non-stop hits.
5: 89.
2: We're playing your song.
6: Trending today.
7: Carly Rae Jepsen has dropped a brand new album titled Day and Night. The project is up on all platforms.
2: We are
1: City FM 89.
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
2: Have you saved our WhatsApp number yet?
1: 03142-898989.
9: Get in touch over WhatsApp.
10: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
2: Just you
11: and the music.
2: Back to back starts now.

0: TFM 89. फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
1: Have you saved our WhatsApp number yet?
2: 031-42-898989.
3: Get in touch over WhatsApp.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
5: सिटी एफएम 89. वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
6: City 89.
8: We're playing your song.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: साउंड ऑफ योर सिटी, सिटी FM 89.
5: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
6: We're now live on WhatsApp.
7: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
6: It's as easy as 03142-898989.
5: Save our number now and WhatsApp us.
8: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
2: Nonstop Hits.
9: City FM 89.